ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी वजीर दिफा कोइज़मी शिंजिरू ने इतवार के रोज सियोल में जनूबी कोरिया के वजीर बराए कौमी दिफा आंग्यो बाक के साथ बातचीत की। उन्होंने जजीरनुमा कोरिया को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए जापान और जनूबी कोरिया के साथ साथ जापान अमरीका और जनूबी कोरिया के दरमियान तआवुन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वुज़रा ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि वो मुस्तहकम मुस्तकबिल पर मबनी दिफाई तआवुन और तबादलों को मजीद फरोग देने के लिए राबते बरकरार रखेंगे। कोइज़मी ने जो अहदा संभालने के बाद पहली बार जनूबी कोरिया का दौरा कर

0: रहे हैं। इतवार की सुबह 5 से तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात की। ये बातचीत दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी वजारती तबादलों के एक जुज के तौर पर हुई। दोनों वुजरा ने इंसानी हमदर्दी के मकासद के लिए तलाश और बचाव की मुश्तरका मशकें दोबारा शुरू करने की बहुत तारीफ की। जापान की बहरी सेल डिफेंस फोर्स और जनूबी कोरियाई बहरिया की ये मशक तकरीबन 9 सालों में पहली बार रवामा मुनक्किद हुई। शिमाली कोरिया अपनी जौहरी और मिजाइल तरक्की जारी रखे हुए है और रूस के साथ फौजी तआवुन को गहरा कर रहा है। वुज़रा ने जजीरा नुमा कोरिया को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से पाक बनाने और देरपा अमन के कायम के लिए अमरीका के साथ दो तरफा और सैफरीकी तआवुन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया। एटमी बमबारी के मुतासरीन हिबाकुशा कहलाने वाले अफराद के एक ग्रुप और दीगर ने इस बात की तस्दीक की है कि जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के ख्वाब की ताबीर पाने की गर्ज से उन्हें नौजवान नस्ल के लिए अपनी सरगर्मियों को बढ़ाना चाहिए। जौहरी हथियारों के खात्मे की जापान मुहिम नामी इस ग्रुप की तश्कील के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर तकरीबन 60 अफराद ने टोक्यो में इतवार को मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। ग्रुप के सरबरा तनाका तेरुमी ने तकरीर की। वो एक और हिबाक्षा ग्रुप निहोन हिदांक्यो के शरीक सरबरा भी हैं। निहोन हिदांक्यो ने जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के असूल की कोशिशों के लिए 2024 में नोबेल अमन इनाम हासिल किया था। जनाब तनाका ने इस मौके का इस तवक्को का इजहार किया कि निहोन हिदांक्यो को ये एजाज मिलने से जौहरी हथियारों के खात्मे की जानिब रफ्तार बढ़ेगी। तहम उन्होंने तस्लीम किया कि वो जंग छेड़े जाने की तरफ तेजी से तब्दील होती महसूस कर रहे हैं। तनाका ने इसे तब्दील करने की जरूरत पर रोशनी डाली, जिसे उन्होंने मौजूदा चैलेंजिंग सूरत हाल के तौर पर बयान किया। उन्होंने जोर दिया कि नौजवानों को इस हकीकत से रोशनास करवाने की अहमियत है कि जंग से ज्यादा बेमानी कुछ नहीं है। जापान की बरी सेल डिफेंस फोर्स GSDF का कहना है कि उसने पहली बार मुल्क के इंतहाई मशरकी जजीरे पर जमीन से समंदर तक मार करने वाला मिसाइल लॉन्चर तैनात किया है। तजियाकार इस तैनाती को मुल्क की बहरुल कायल की अतराफ के दिफा को तकवीत देने की कोशिश का हिस्सा करार देते हैं। GSDF ने इतवार के रोज एक सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि उसने इस महीने मिनामी तोरीशिमा जजीरे पर टाइप 12 किस्म का जमीन से समंदर तक मार करने वाला मिसाइल लॉन्चर और हदफ के तयन के लिए जासूस ड्रोन तैनात किए हैं। जमीन से समंदर पर मार करने वाले टाइप 12 मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। मिसाइल इस बार जजीरे पर नहीं लाए गए। मिनामी तोरीशिमा टोक्यो के ओगासावारा जजायर का हिस्सा है और ये जापान के मरकजी जजीरे होनशु से तकरीबन 2000 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाके है। GSDF को उम्मीद है कि वो अप्रैल 2027 में शुरू होने वाले अगले माली साल के अवाइल से फायरिंग की मशकें शुरू कर देगी।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। चीनी वजारत तजारत का कहना है कि 20 जापानी कंपनियों और इदारों को मुल्क की बरामदी कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। वेनेजुएला में बुध को आए 2 तबाहकुन जल्जलों के बाद इमदादी टीमें मलबे तले अफराद को तलाश कर रही हैं। NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

समाचार। चीन के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को देश की निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया गया है। इनमें राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन संस्थान तथा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनियां शामिल हैं। गौरतलब है कि चीन इस सूची में शामिल कंपनियों और संगठनों को दुर्लभ धातुओं सहित नागरिक, सैन्य, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ये 20 संगठन जापान की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में शामिल हैं। चीनी मंत्रालय ने 20 अन्य जापानी कंपनियों को निगरानी सूची में शामिल करके उन पर निर्यात नियंत्रण और कड़ा करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन कंपनियों को बेची गई वस्तुओं के अंतिम उपयोग के उद्देश्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। इससे पहले फरवरी में भी चीन ने 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया था। वेनेजुएला में बुधवार को आए दो विनाशकारी भूकंपों में लापता हुए लोगों की तलाश में बचाव दल और पड़ोसी देश जुटे हुए हैं। 1450 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। संसदीय अध्यक्ष होर्हे रोड्रिगेज ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि 3150 लोग घायल हुए हैं और 12721 लोग विस्थापित हुए हैं। 750 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। स्पेसएक्स द्वारा प्रबंधित स्टारलिंक ने घोषणा की है कि कंपनी वेनेजुएला के प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा निःशुल्क प्रदान कर रही है। विभिन्न देशों से कई बचावकर्मी क्षतिग्रस्त इमारतों के नीचे फंसे लोगों की तलाश करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उनके ये प्रयास समय के खिलाफ दौड़ जैसे हैं क्योंकि 72 घंटे के बाद जीवित रहने की संभावना तेजी से कम हो जाती है। अमरीकी समाचार केंद्र एक्सियोस के अनुसार अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं और वो मंगलवार को बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। एक्सियोस ने रविवार को एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी के हवाले से ये खबर दी। वार्ता कतर की राजधानी दोहा में होने की उम्मीद है। ईरान ने बृहस्पतिवार को ओमान के तट के पास से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज पर हमला किया था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में एक दूसरे पर गोलाबारी की। ईरान उन जहाजों पर अपने हमलों को उचित ठहरा रहा है जो उसके द्वारा निर्धारित मार्गों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन के आधार पर ये मार्ग निर्धारित किए गए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने रविवार को इराक में पत्रकारों से कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य का प्रबंधन केवल ईरान के हाथ में है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हमलों को संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन बताते हुए इनकी निंदा की है।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 29 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो ने रविवार को सोल में दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ वार्ता की। वे कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच, साथ ही जापान, अमरीका और दक्षिण कोरिया के बीच सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। मंत्रियों ने स्थिर व भविष्योन्मुखी रक्षा सहयोग एवं आदान प्रदान को और विकसित करने के लिए संवाद जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। पदभार संभालने के बाद कोइजुमी पहली बार दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। उन्होंने रविवार सुबह आन से लगभग एक घंटे मुलाकात की। ये वार्ता दोनों देशों के बीच पारस्परिक मंत्री स्तरीय आदान प्रदान के तहत आयोजित की गई। दोनों मंत्रियों ने मानवीय उद्देश्यों के लिए संयुक्त खोज व बचाव अभ्यासों की बहाली की जमकर सराहना की। जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल और दक्षिण कोरियाई नौसेना की भागीदारी वाला यह अभ्यास लगभग 9 वर्षों में पहली बार इस महीने आयोजित किया गया। उधर उत्तर कोरिया का परमाणु व मिसाइल विकास कार्यक्रम जारी है और वो रूस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रियों ने कोरियाई प्रायद्वीप को पूर्णतः परमाणु अस्त्र मुक्त बनाने और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सहयोग जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अणुबम उत्तरजीवियों यानी हिबाकुशा के समूह व अन्य लोगों ने पुष्टि की है कि परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की रचना के लिए उन्हें युवाओं के बीच अपनी गतिविधियों का विस्तार करना चाहिए। जापान परमाणु अस्त्र उन्मूलन अभियान नामक एक समूह की स्थापना के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को टोक्यो में लगभग 60 लोगों ने एक बैठक में भाग लिया। समूह के प्रमुख तानाका तेरुमी ने बैठक को संबोधित किया। वे एक अन्य हिबाकुशा समूह निहोन हिदांक्यो के सह अध्यक्ष भी हैं, जिसे परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की रचना के प्रयासों के लिए 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तानाका ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि निहोन हिदांक्यो को मिला ये सम्मान परमाणु हथियारों के उन्मूलन की दिशा में गति प्रदान करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि आज विश्व तेजी से युद्ध की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तानाका ने मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को यह सिखाना महत्वपूर्ण है कि युद्ध से ज्यादा निरर्थक कुछ भी नहीं है। जापान के थल आत्मरक्षा बल यानी GSDF का कहना है कि उसने पहली बार देश के सबसे पूर्वी द्वीप पर सतह से जहाज पर मार करने में सक्षम मिसाइल लॉन्चर तैनात किया है। विश्लेषकों के अनुसार प्रशांत महासागर में अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के जापान के प्रयासों के तहत ये तैनाती की गई है। GSDF ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने इस महीने मिनामी तोरिशिमा द्वीप पर सतह से जहाज पर मार करने में सक्षम टाइप 12 मिसाइल लॉन्चर और लक्ष्य पहचानने में सक्षम टोही ड्रोन विमान तैनात किए। टाइप 12 मिसाइलों की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। फिलहाल इन मिसाइलों को द्वीप पर नहीं लाया गया है। मिनामी तोरिशिमा टोक्यो के ओगासावारा द्वीप समूह का हिस्सा है और ये जापान के मुख्य द्वीप होन्शू से लगभग 2000 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। GSDF अप्रैल 2027 में शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष से प्रक्षेपण अभ्यास शुरू करना चाहता है।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को देश की निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया गया है। इनमें राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन संस्थान तथा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनियां शामिल हैं। गौरतलब है कि चीन इस सूची में शामिल कंपनियों और संगठनों को दुर्लभ धातुओं सहित नागरिक, सैन्य, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ये 20 संगठन जापान की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में शामिल हैं। चीनी मंत्रालय ने 20 अन्य जापानी कंपनियों को निगरानी सूची में शामिल करके उन पर निर्यात नियंत्रण और कड़ा करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन कंपनियों को बेची गई वस्तुओं के अंतिम उपयोग के उद्देश्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। इससे पहले फरवरी में भी चीन ने 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया था।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।